यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार हूँ, मुझको फ़कत तुझ से हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूँ, मुझको फ़कत तुझ से हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूँ। हरदम जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूँ।

कर चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बद किरदार ना मसीहा, तू भी

कभी दिल से शुक्र करना। मेक शुक्र, इंक्रीज शुक्र देन अल्लाह तबारक व तआला इंक्रीज द नेमत्स। मेरी जिंदगी का हासिल।

यार रहे यार अब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फकत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हर वक्त जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर

अपना भी चमन होता। बसर अब जिंदगी अपनी दियारे कुदस में होती, वही जीता वही मरता वही गोरो कफन होता। मुझको जीने

0: और बस उसी पर तुम नजर करना। हैव ग्रेट होप इन अल्लाह तबारक व तआला एंड हैव होप इन हिज रहमत एंड हिज मर्सी एंड बेग ऑफ हिम कीप योर गेज focused on Allah tabaraka wa ta'ala's treasures and Allah ta'ala's rahmat and Allah ta'ala's mercy. Now, we discussed all this last week.
1: Ye markaz hai muhajir hai musalmano ka awwal se पहुंच जाओ मुकद्दर से तो गफलत से हजर करना।
0: दिस इज द प्लेस ऑफ हिजरत ऑफ नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। इट्स अ प्लेस वेयर द सहाबा किराम मेड हिजरत। फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज अ प्लेस वेयर हिजरत वॉज मेड। सो इफ अल्लाह तबारक व तआला गिव्स समबडी द तौफीक टू मेक हिजरत फ्रॉम हिज टाउन हिज सिटी हिज कंट्री एंड गो टू मदीना शरीफ, so then ghaflat se hazar karna, stay far away from negligence, from indifference,

रहे तोलब में सवार सब है पयादा मिसले हो पार में रहे तोलब में सवार सब है पयादा मिसले हो पार में तेरे गुलिस्तान में सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं तेरे गुलिस्तान में सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शिआर में हूं रहा मैं बेकार जिंदगी भर बस अब तो मशगूल कार में हूं हर दम करूं मैं ऐ मेरे बारी

कर रूह को नूरे तक्वा से तूषाद कर, नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर, दिल को नूरे खुदा से तू आबाद कर, दिल को नूरे खुदा से तू आबाद कर और

अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर, दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर, रूह को नूर तक्वा से तू शाद कर, नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर, हम्द से इस जुबां को तू हम्माद कर, हम्द से इस जुबां को तो हम्माद कर, सर को चौकट पे उनकी तू सज्जाद कर। हम्द से इस जुबां को तो हम्माद कर, सर को चौखट पे उनकी तू सज्जाद कर, अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर, दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर, अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर, दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर। अल्लाह तबारक व तआला मस्ट बिकम प्लीज्ड विद अस, मस्ट मेक अस हिज एंड ही मस्ट बिकम आवर्स, देन ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है।

छूटे सितम उसका शिकवा नहीं, चाहे बदले जमाना नहीं उसका गम, चाहे बदले जमाना नहीं उसका गम।

0: नहीं, इसे लाख आए मुसीबत तो परवाह नहीं। या अल्लाह, आई हैव एक्सेप्टेड इस्लाम फॉर माई ओन गुड, फॉर माई ओन सेल्वेशन। आई हैव बिलीव्ड इन यू एज एन ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, ऑल सीइंग, ऑल हियरिंग, ऑल नोइंग, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट अल्लाह। आई ट्रूली बिलीव दैट यू आर द वाइज, एंड वट एवर डिफिकल्टीज, हार्डशिप, पेन एंड सफरिंग दैट आई गो थ्रू, इट इज अ टेस्ट एंड अ ट्रायल। So therefore he says, La kae musibat to parwa nahi. I am unconcerned, irrespective of what kind of difficulties, tests and trials and hardships I have to face. Koi manzil bhi hai. La kae musibat to parwa nahi. La ka toote sitam uska shikwa nahi. I'm not even complaining of that to you, my Allah. La ka toote sitam uska shikwa nahi. And thereafter he says, चाहे बदले जमाना नहीं उसका गम। इफ द एंटायर क्रिएशन ऑफ योर्स हैज टू टर्न अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, बिकॉज आई हैव बिकम अ बिलीवर इन यू ओ माई बिलवर अल्लाह, बिकॉज आई हैव बिलीव्ड इन योर एंजल्स, इन योर बुक्स, इन द लाइफ आफ्टर डेथ, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, बिकॉज आई हैव बिलीव्ड इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द लास्ट ऑफ ऑल मैसेंजर्स, एंड आई हैव बिलीव्ड इन द कुरान शरीफ एज द फाइनल बुक ऑफ अल्लाह एंड द कलाम ऑफ अल्लाह। Now because of that, if my whole family, my nation, my country, everyone turns away, I am unconcerned. Chahe badle zamana nahi uska gham. Aap badle to apna tikana nahi. But my beloved Allah, if you have to turn away your glance of mercy, then I will have no ground to stand on. Now this is coming from a Hindu person who came into Islam, and when he was facing all the tests and trials of his life. इसे मैंने माना खताओं का पुतला हूं मैं। अगेन एग्जैक्टली लाइक द सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन एंड द पायस एंड द राइटियस, दैट दे डू एवरीथिंग राइट बट स्टिल दे से वी आर सिनफुल सर्वेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ दिस अर्थ। सो ही सेज मैंने माना खताओं का पुतला हूं मैं। आई एक्नॉलेज दैट इन डीड आई एम अ वेरी वेरी सिनफुल सर्वेंट ऑफ योर्स, आई एम एन एपिटमी ऑफ सिंस। मैंने माना खताओं का पुतला हूं मैं, अपनी नजरों से लेकिन गिराना नहीं। पर ओ माय बिलवर अल्लाह, डोंट ड्रॉप मी फ्रॉम योर साइट। नाउ दिस इज व्हाट दे हैव टू गो थ्रू। दे अप्रिशिएट व्हाट इस्लाम इज, दे अप्रिशिएट व्हाट ईमान इज, बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड द ट्रायल्स दैट दे गो थ्रू। सो पीपल प्रोसीडिंग फॉर हज, दे टेक अवर हार्ट्स इन दैट डायरेक्शन। अवर ईमान एंड इस्लाम कम्स फ्रॉम देयर।
1: जमी पर मदीने की रहते हैं हम,